0: प्रीति साहब आपको करे आप कैसो करीब का नानक नजर किया
1: जैसे तो सतगुरु के

जाए कूट पर जाए कूट सब संसार कूट मंडप कूट माड़ी कूट में सुनहार कूट सोना कूट रूपा कूट पहनहार कूट काया कूट कपड़ कूट रूप पा।

खत्री शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द का करता है सर्व शब्द एक शब्द देखो जाने पे हो नाता का दास है सोई नंदन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा।

राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

एक दिन कन्हैया जी तुर जाए तो एकांत बह के अपने सारी से मूल मंत्र का जाप करे। संत बड़ा महान बड़ी शक्ति है ये दंडारी मंत्र, जितना जप लो एदा बड़ा काम। तुरदियां फिरदियां उठ दियां बहदियां हर नाम, वो नाम वाहिगुरु जी का ते जपांगे सतगुरु दियां मेहरां, फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला, फिर साडा एक लोक दुखी परलोक लगाइए। उस उपरंत कीर्तन की समाप्ति और

बादशाह आप कृपा कीती है और असि अपने गुरु अगे बेनती करनी है महाराज धन गुरु रामदास पातशाह धन गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करो जिस कम ये जो आप जी ने कृपा बख्शिश कीती है कृपा करो मेरा दे घर विच आओ साडे ते अपनी दृष्टि करो और बख्शा करो जिवें कबीर साहब कह रहे हैं आप भी सारे कहो जेड़े जेड़े कह सकते हो।

मटैया रंग पूम के पवैया पार पूम के मटैया नाच तीन लोक गाइया कहूं के तनैया है न मैया जाके पैया हूँ छोड़ हो के चुना कोड जादू प्रीत लाइया साधना सदैया धूलता।

निषाद बदल गया ना, माल कौश का निषाद नीवा, चंद्र कौश का निषाद उपरला, एक चंद्र कौश धनी सानी चंद्र कौश और सूरज कौश।

चार कौस और सरवण करो। पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई।

परमेश्वर आप होवा रखवाला, परमेश्वर आप होवा रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।